Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Helembu FM 89.6 MHz.
1: Tigre Media Production.
2: Tiene más de mantener la famosa cosa de Bali.
3: ¿Ena? ¿Qué tú para aquí? No, la sabes que ha venido
2: un प्रोले जे चातरेने दिन लाख छ खले रा पाइछ त्रो
3: अनि चातरेने दि बा वन दे वन रे माजे काही पल कसुन दे रे तमे
2: प्रोले जे प्रो प्रोले जे
4: अजुने चले मत है
3: अजुने माजे चातर मुंडो खामी चेर न मुंडो अनि सिने दो वन दो ने रे
4: ए
3: चातरेने बा
4: ए हिमरा हेलो अपन को पर बोल दे
5: ले ले
4: Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

0: क्या सच में टोको ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ खर्च किए? इंटरनेट पर दावा है कि जापान के टोको ने खुद को कुत्ते में बदलने के लिए 220 करोड़ खर्च किए और सर्जरी तक करवाई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। टोको का सपना था कि वह एक बार जानवर जैसा दिखने और उसका अनुभव करने की कोशिश करे। इसके लिए उसने जापानी कॉस्ट्यूम कंपनी ज़ेपेट से एक बेहद रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया। कॉस्ट्यूम की कीमत करीब 20 लाख जापानी येन थी, यानी लगभग 10 से 13 लाख, न कि 220 करोड़। वीडियो इतना रियलिस्टिक था कि लोगों को लगा टोको ने सच में सर्जरी करवाई है। तो अगली बार कोई 220 करोड़ वाली खबर लिखे, शेयर करने से पहले फैक्ट जरूर चेक करना। तो भाई, 220 करोड़ की सर्जरी नहीं, सिर्फ एक महंगा कॉस्ट्यूम था। इसलिए खबर वायरल करने से पहले सच जरूर चेक करो, क्योंकि गलत खबर फैलाना आसान है, लेकिन सही खबर फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या सच में टोको ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ खर्च किए? इंटरनेट पर दावा है कि जापान के टोको ने खुद को कुत्ते में बदलने के लिए 220 करोड़ खर्च किए और सर्जरी तक करवाई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। टोको का सपना था कि वह एक बार जानवर जैसा दिखने और उसका अनुभव करने की कोशिश करे। इसके लिए उसने जापानी कॉस्ट्यूम कंपनी ज़ेपेट से एक बेहद रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया। कॉस्ट्यूम की कीमत करीब 20 लाख जापानी येन थी, यानी लगभग 10 से 13 लाख, न कि 220 करोड़। वीडियो इतना रियलिस्टिक था कि लोगों को लगा टोको ने सच में सर्जरी करवाई है। तो अगली बार कोई 220 करोड़ वाली खबर दिखे, शेयर करने से पहले फैक्ट जरूर चेक करना। तो भाई, 220 करोड़ की सर्जरी नहीं, सिर्फ एक महंगा कॉस्ट्यूम था। इसलिए खबर वायरल करने से पहले सच जरूर चेक करो।
1: साथीहरू, सबैजना यो भिडियो चाहिँ स्क्रिप नगरी अनि समय हेर्दै जानु है। यो कुकुरलाई यो मान्छेले यस्तो ट्रेनिङ देखायो कि उसको मालिकले चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो ठाउँमा गएर पनि हेर्नुहोस् त कस्तो रोलिङ हान्छ त्यहाँ गएर, यस्तो खतरनाक ट्रेनिङ के जर्मन सेफर्ड जस्तै कुकुर हेर्नुहोस् त, मान्नै पर्छ क्या कुकुरलाई। सबैजनाले भिडियो मन परेको भए लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर एउटा प्यारा सा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है। जय नेपाल। साथीहरू, सबैजना यो भिडियो चाहिँ स्क्रिप नगरी अन्तसम्म हेर्दै जानु है। यो कुकुरलाई यो मान्छेले यस्तो ट्रेनिङ देखायो कि उसको मालिकले चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो ठाउँमा गएर पनि हेर्नुहोस् त कस्तो रोलिङ हान्छ त्यहाँ गएर, यस्तो खतरनाक ट्रेनिङ के जर्मन सेफर्ड जस्तै कुकुर हेर्नुहोस् त, मान्नै पर्छ क्या कुकुरलाई। सबैजनाले भिडियो मन परेको भए लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर एउटा प्यारा सा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है। जय नेपाल। साथीहरू, सबैजना यो भिडियो चाहिँ स्क्रिप नगरी अन्तसम्म
2: कोई बच्ची बोले कि नहीं
3: पाँच
2: कोई बच्ची बोले कि नहीं पाँच।

0: नमस्कार, म गायक अञ्जली शर्मा।
1: नमस्कार, म गायक तथा सर्जक एके सापकोटा। रात जाँदै जान्न गीत हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी चमक बसुगो प्रत्येक मि परमेश्वरलाई लालन महत्वपूर्ण मुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेदला जीवनला छेन गदे श्रृंखलाला अङ्क छरी रङ्गी स्वागत मुला नबियोग तामाङ तिनी न रङदेन याकर्गी सत्य कथा यांसी लवरी से मुला न द पक्क मुलागी रङचु गोबरी हम्सु मुला चु याकर्गी मिला बारे दि हिन्न जोसे रङला खेप्पा औलरी लालन पीडा महसुस लजिबा मुबा नछरी चु जेखेन चाङना मात्र पीडा मुबा थेरङ तसी थेसी चुदा बेवास्ता लजी आशा लबनगी चु रङ नोन माला तसै थेरङ आतनी बरु दुखै झन झन बडप लवन निजी जब थेसे थे काङ्री याक्रगी पाइला नछ बडा मुला थेदा पीडा महसुस तामुला थेसे हलाइदा थेला लागिरी प्रार्थना लबरी बिजी तसै पीडा जारी ताजी थेसी रङला पारिवारिक डाक्टर दा रुप्त वा निर्णय लाजी तसै डाक्टर थे दिन कार्यालय रे आरिमुबा चुरङ लसी थेसी दिमरिन समस्या समाधान लबरे रामलाई बिसी अनलाइन समस्याला समाधान लजी थेसी पत्ता लगाइदिजी काङला औला संक्रमित तब मुबा अनलाइन याङमा निर्देशन गरे अनुसार थे गोर्नी गेलामा निर्णय लजी एक दिन रे लालन पटक 15 मिनट दोना औला सिगो थेसे चु गे दोङमा तातो पानी लेपक्यु प्रयोग लासी लजी दुई संक्रमित ग्लारी दिन रि लालन पटक चियाला दोङला छुगु लगाव लस्युगो दोङला छुगु दा मेला लुला छुगु एन बिमुला चु चियाला दोङला बाग्याम याङमा याकर्गी आवश्यकता हिन्बा जुन अस्ट्रियाला जुन बासिन्दा हिन्बा यदि रङदेन चियाला दोङला छुगु आरे विषम रङ नियोस्पोरिन वा पोलिस्पोरिन रङमा अर्को एन्टिबायोटिक मलम प्रयोग लाबरी हम्सुला थेसे चु नही गे इमानदारी से लाजी थेन्दे थेला काङला औला पिबी गदे पुरान रुब्री हन्ना लाजी नरङ द आवश्यकता बा डाक्टर द रुप्तवरी ग्याम बत्ती बबारी वाकला लाजीबा आरे तसै थे परिस्थिति गरी मुला जहाँ घरेलु उपचार गदे रङदा लालन प्रभावकारी तपी हम्ला यद्यपि फेरि स्यान्दो परिस्थिति गरे मुला जहाँ घरेलु उपचार से रङदा फान्ना नबरी आहाम देन जब डाक्टर दा रुप्तबा लालन महत्वपूर्ण मुला पहिलो कुरन्थी 12:21-22 मिसे यादा ए गादा आतो बिसी पङ अखाम ओछे थोबो से नोन काङदा एनी गद गादा आतो बिसी पङ अखाम बरु लुइरी मुबा कमजोन से गदे झन अरेना आता मुला यंगसे हाइमाई नोन प्रत्येक निला महत्वपूर्ण चान्न वा अङ्कलन लाला आदमुला याङ हाइमदा च्यादा थेन्दे याङला मिसे थेने गदी कति महत्वपूर्ण मुला बिसे आराङ मारे अहम तसै ना राङदा ग्यारेन्टी पिनला थेने गदी लालन महत्वपूर्ण मुला संसारला लागरी तिगै मिगदे तुच्छ लगबारित हमला तसै परमेश्वरलाई लागि प्रत्येक नि लालन मूल्यवान महत्वपूर्ण मुला देन परमेश्वर से प्रत्येक निदा विशेष प्रतिभा देन क्षमता गदे से सुसचित लस्युबा मुला जुन से थेनी गदे दा वर्क परला मि गदेला लुइरी गेन सकारात्मक प्रभाव पारिबा क्षमता पिन मुला पहिलो कुरान्ती 12:23 यंगसि जजा मन्दा लुइला थे से गदे दा झन जान लसी थन्मुला ओचे उनबरी अखम्बा से गदे दा झन जोगाव लसी थन्मुला जब रङ रङ रङदा कमजोर मृङ्गु सिउला थेन्दे थेरि क्षमतालाई चाङना मृङ्गुला परमेश्वर से रङदा थे मिद विशेष हेर्चा देन उपचार पिनबरी पङजीवा मुला तिग्द विषम परमेश्वर देन एनी गदेला लुइला लागरी लागन अद्भुत योजना मुला पहिलो कुरन्ती 12:26 चुदे लुइला से गिग्द दुख तजी विषम लुइला जम्मन सेदा दुख तला पछे लुइला से गिग से मान याङजी विषम लुइला जम्मन मिस गदे ताङला जब थे मिला कङला औला सोजी थेरा बेनान शरीर से खेग्याम पीडा भोग्दी मुला देन थेला कङला औला शुभ लिछ थेला बेनान शरीर से लानान जनालासी गेला बुरी थन्सीजी थेरन्तसी जब रङ हलाइसे नङसु मुला थेनी गदे द बेवास्त थलैसुगो थेनी गदेसी सामना लाजिब चुनौती गदे पार लबरी रु लस्युगो चुरङ लसी बेनन क्रिस्चियन विश्वासी गरेदा फाइदा तला आमेन रङ निर जीवनले परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ निला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
3: Time check. It's 7 PM. अहिले साँझको 7 बजेको छ।

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो रहँ होइन, बाध्यता हो। म जहाँ गए तपाईँ मेरो मन फल्की
1: रबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: यदि मेरे याद आए मैंने मूल्य कुछ नहीं रहा, आप सुना।